0: मार मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो
2: मिस्टर बेरी म्यूजिक मडोरो प्रमोशन कॉकटेल

0: और मैं पाचू
1: इटियो और रेडियो पियम चुनके रे वेर क्वारो
0: पियम चुनके रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेला
1: इटियो और रेडियो.